हे परमात्मा मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पितमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल, मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण, वादी षड़ज, संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बो बोत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए,

फड़के रखती है। सगल वनस्पत में बैसंतर ए मिसाल देती है, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जलथल जलथल मैयल पूरिया रविया विच वन सवे घट राम बोले। मन ते सट वज फिर जंगला हुण की कीता, लकड़ी दी रोटी गल च पा ली। कोई पुछदा है फरीद रोटी, कहिंदा कुछ खाधी है कुछ पल्ले बनी है, झूठ नहीं बोलता, जेड़ी पहले खा ली। पल्ले की बनी है लकड़ी दी, अजे भी रब 12 साल खूह च पुट्ठा लटके शरीर सुख हड्डियां दा टच कान तकिया मेरी खुराक शायद इथों मिल जाए, सारे शरीर तो कुछ नहीं मिले। तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंडे कांग अजे सुरब ना बहुड़ियो देख बंदे दे भाग। फरीद उठा लटकिया जिस वेले कान फरीद दी अख वल जुरत कीती तो फरीद दी आह निकल गई। फरीद रो के कहंदे कान

0: मेरे नेत्रों नु ना छे, मेरी अखां नु कुछ ना आख कांगा, क्योंकि इन्हां नेत्रां च साई दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नु बेचकला है। मैनू जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरा, जे सौ प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर देना, कद आवेगा। इतना समा बिताया, अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी साध संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त दे हेठां बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़ियां बोल रही हैं। फरीद ने तकिया, पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़ियां बोल दिया हैं, मेरी बंदगी दे विच खलड़ पा रही है। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते किया, चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी? कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां दरख्त तों डिग पईयां ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गईयां, तड़फ पईयां। दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करन वाले दा जिहड़ा मन हुंदा है उह बड़ा कोमल हुंदा है। दुखियां नूं वेख के दुखी ते सुखियां नूं वेख के मालिक दा शुक्र। मन बड़ा नरम, फरीद ने ठंडा सा लिया। ओ पापी मन, तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया? विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, वचन किया चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावे रब ने मिलिया पर रब की शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया। गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी, प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते किया, बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखिया, पानी दा डोल खूह चो कढ़िया ते बाहर डोल दिता। इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा, बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे। दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने ए भी बाहर डोल दी। फरीद नू गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं। दो बेरी किया है, पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वाल वेख दी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोल दी। गुस्सा आया ते क्या, मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी? तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते किया, ओ फरीद, ए कोई जंगल दियां निखसमियां चिड़ियां नहीं जिन्हां नू मार के जवाल लवेगा, मैं खसों वाली आखो श्री वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। कोई रसना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए। गुरुदरबारे जुड़े हो, सच दा वणज कर रहे हो, आओ भाई सच दे वपारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने, पानी की प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च मैं चिड़िया मार के जवा दी। इंसान तो की उथे हैवान ही कोई नहीं थी, पर तेन कि पता लग गया। बेटी तेन किस तरह पता लग गया? इन्हे हस के कहा, मैनू सब पता है, है? मैं इतनी बंदगी कीती है, अजे मेरे अंदर अंतर्ज्ञानता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली, अद्धी रात का समा से मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी तकिया, किधरों आई है ये आवाज? वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगिया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नु त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरे अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौ गया सी, आंखों से लाए नींदर आ गई। नींदर बड़ी पर्वत है,
1: नींदर बड़ी पर्वत, कहने थोड़ी उठे भी आ जाती है नींद।
0: जे मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पे, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी। ए सोच के फरीद मैं अपने पति दे चरणा वल पानी का परेया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय के बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वल तक किया, भागवान तू इथे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगया सी, पानी का छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानू प्यास लगी है, जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी दा छन्ना भर के खड़ोती हां, मेरे साईं जी पानी पी। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हत्थां तू छन्ना लेके पानी वाला उसने अपने मुंह नाल लाया। फरीद मैं सच कहिंदी हां, ज्यों ज्यों मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आउंदा सी।
2: You're listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया।

रतन मणि गल बंद रहे क्यों कीन न जाने। रतन मणि गल बंद रहे क्यों कीम न जाने। करछी साव न संभले भोजन रस खाने। डड्डू चिक्कड़ वास है कमले न सियाने। नाप कथूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने। गुजर गोड़स वेच के खलसूड़ी आने।

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख सुके रुख ज्यों

कुत्ते हलत मन सुगावे, ठंडा तत्ता कोयला काला करके हाथ जलावे, ज्यों चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे, जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे, वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर सवें तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण बिमो

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्यालिए व्यो मुखो सुटे। सप्पे दूध प्यालिए विहो मुखो सटे। पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। अपन

कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे काओ कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे हाथी नीर न वालिए, सिर छार उड़ावे तुम्हें अमृत सिंजिए, कुड़त न जावे सिमल रुख सरेविए, फल हाथ न आवे निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी निंदक

लसन लुकाया ना लुकै बै खाजे कूणे। लसन लुकाया ना लुकै बै खाजे कूणे। काला कंबल उजला क्यों होए साबूणे। डैमू खखर जोछ है दिसे मुह सोने।

कर दे परवासा। थल विच तपन पठियां क्यों लहे प्यासा। सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

कोड़िया पही करना जुगला पही त्यधारी है, देखे किता अपना दर्क चिपकी सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है।

रामदास गुरु सच्ची सही एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लई त्याय अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुई साए अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिन दिठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिये करना उन्हें आवे ताए दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हो सहाय दसा पातशाही के स्वरूप जायरा जहूर हाजरा हजूर कलकला भरपूर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आपकी वाणी की महिमा कहीं न जाए ध्यान।

आप जिन याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जिन बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। जिसनु जीवन जीना आंदा है उससे भी ही जीवन की यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की बिदना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख सक्सेस नु गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना, कि गुरु साहब सक्सेस किसनु आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गला की समझन वाली। स्त्री पुरुख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरुख, स्त्री वास्ते पुरुख अते पुरुख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नू दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचण दे वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो पर्सनल नीड्स जो पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, व्हाट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। तो महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आता, असं तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए, असं डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखदे जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

जन कब हूं नहारे। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहारे।

खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना, मेरा तो नाम बबिंद सिंह। अस खिलौना।

आन को दान न लागत नीको, आन को दान न लागत नीको, आज भले इनी हो दियो, आज भले इनी हो दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

ही जब जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे, आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं के प्रसाद सब जाले, इन्हीं के प्रसाद सब जाले, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

0: वायनक रूप होए प्रगटिया,
1: वायनक रूप होए प्रगटिया।
0: तो आप केड़े केड़े रूपां जाए ने, वायनक रूप अनेका रूप आ जाए। सतयुग तै मानियो छलियो बल ब्राह्मण पायो, वायनक रूप होए प्रगटिया, मामा गोविंद सिंह वायनक रूप। सतयुग तै मानियो छलियो बल ब्राह्मण पायो, त्रेता तै मानियो राम रघुवंश कहायो, वायनक रूप होए प्रगटिया, वायनक रूप।